आप सुन रहे हैं विविध भारती झरोका में। लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 229 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार एसएल कंडारा। इस कार्यक्रम का सातवा भाग आज आप सुनेंगे समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी आप सुनेंगे। चित्रलोक का समय होगा सुबह 8:30 से और रात्रि 8:15 से। 9:30 से आज के फनकार केंद्रित होगा अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर। दस बजे से पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे समय 10 बजे। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग और 12:05 से समय होगा यादों की महफिल का। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का। 2:30 से सदाबहार नगमे आप सुनेंगे।

4 बजे से पिटारा में आज के मेहमान चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग आप सुनेंगे। संपादन सहायक काजल भद्रगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। वक्त हमने बताया 4 बजे दिन में। पांच बजे से छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने लेकर आएंगे। छह 6:35 से वक्त होगा भक्ति रचनाओं का संध्या रंजन में। 7 बजे से फौजी साथियों के लिए जयमाला लेकर हाजिर होंगे। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग सुनिएगा।

8 बजे से हवा महल में सुनिएगा झलकी, वो कैसी होगी। लेखक सुधा जौहरी, निर्देशक HS व्यास। नौ बजे से प्रोग्राम होगा आपके लिए। नौ बजकर 30 मिनट से आज के फनकार और 10 बजे से छायागीत आप सुनेंगे। दस बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी। पंडित जी, रागों की चर्चा हो रही है। पिछली कड़ी में हमने राग शंकरा की बात की, आज राग मिश्र खमाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जयंत जी, ये बहुत रेलेवेंट और बहुत आपने अच्छा चयन किया, क्योंकि शंकरा बहुत गंभीर राग है
1: जी,
2: जबकि मिश्र खमाज लाइट प्रकृति का राग है। सुगम संगीत में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है
1: जी जी।
2: और ठुमरी दादरे में मुख्य रूप से खमाज में ठुमरी गाई जाती है
1: जी, बिल्कुल।
2: और लाइट म्यूजिक का सबसे प्रिय राग है ये मिश्र खमाज।
1: हाँ,
2: ठुमरी दादरा में बनारस और पटियाला, ये दो स्कूल बहुत बड़े स्कूल रहे हैं
1: जी।
2: पटियाला में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके बेटे मुनव्वर अली खान, अजय चक्रवर्ती, जगदीश प्रसाद पंडित, ये सब लोग उस परंपरा को फॉलो करते रहे
1: जी।
2: जबकि बनारस घराने की जो स्टाइल है ठुमरी, उसमें सिद्धेश्वरी देवी और महादेव प्रसाद मिश्रा, उनके पहले मौजुद्दीन खां, और बड़ा उनका इतिहास
1: जी।
2: लेकिन जो उसके बाद जो कलाकार मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा है, वो गिरजा देवी जी, और गिरजा देवी जी के बाद सिद्धेश्वरी देवी, या उनकी समकालीन कह लीजिए आप, और पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी, जो इस परंपरा के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे। तो उनके साथ मैंने कुछ कॉन्सर्ट संगत की थी, तो मुझे भी उनके गाने की बड़ी मन में उनका गाना बैठा, तो उनकी परंपरा से मैं एक ठुमरी पेश करना चाहता हूँ आज। मिश्र खमाज
1: स्वागत है।

0: क्या बात है पंडित जी। जैसे जैसे इस ठुमरी के स्वर गूंज रहे थे, मन में गीत उभर रहा था, फिल्म बुढ़ा मिल गया।
1: अरे बहुत अच्छा है, मन्नाडे साहब का,
0: मन्नाडे साहब का गाना है।
1: बिल्कुल,
0: आयो कहां से घनश्याम।
1: बिल्कुल,
0: और ये शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीतकार राहुल देव बर्मन। यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं
1: जरूर।

0: এখন পর্যায়ক্রমে দিল্লি কেন্দ্রের প্রভাতী হিন্দি ইংরেজি এবং সবশেষে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইংরেজি সংবাদ শিলং কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की

0: नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास

0: दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा

0: ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after

और आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों

0: सकती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की है। कतर के अमीर ने रविवार को रास लफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति को रोका और इंटरनेट भी वहां बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को और आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इससे पहले श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मैच में आज ग्रुप के में कोलंबिया और कांगो के बीच मुकाबला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिमी मानसून के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अगले 3 दिन तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th

फिल्म वेकअप सिड से ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कपूर एंड सन्स इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाजों में अरमान मलिक का संगीत था। इस प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जब वी मेट, इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की, पकाए भूर की।

0: कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

0: एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी। जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी। ये जो मैंने अभी नाम लिए, मैंने ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया है ना। तो ये पिक्चर भी नहीं चली। उसके बाद जो है ये रिलीज हुई, रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागू तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें।
1: जी, क्या बात
0: तो
1: है।
0: ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी।

0: थे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया। पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया, वहां पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज
0: थी।
1: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है?
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: तो रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर, वो है जगजीत सिंह साहब। और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ। बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतलब चेंज करते हैं। नहीं, मतलब वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई, पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी, वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
1: जी,
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है। इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, हाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है। अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह।
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहां से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे, और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है, और इस लाइन को आपको दो लाइन करके, और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी।
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ, और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर।
1: वाह।
0: ये पहली जो गजल लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना है, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी,
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए, और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।

0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है
1: रात कुछ ऐसे कटी है,
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह, क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: কম্প্যাক্ট ডিস্কে এতক্ষণ শুনলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিল্পী ছিলেন বিজয়া চৌধুরী। আকাশ বাণী কৈলা শহর, সম্প্রচারিত হচ্ছে দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ

0: से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पोल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: कूना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ। और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए। नमस्कार।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया। मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है। ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए सिरे से बातचीत के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के बारे में जानकारी देंगे। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले में जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुरुद्दीन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाकर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनगिरी सिरी जिले के में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के यजाली क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 72.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन के दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की भूमिका निभाएंगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको में ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो
0: हैं।
1: हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे
0: भाई
1: भाई।
0: हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर खरीदना
1: खरीदनी
0: है,
1: पड़ेगी है ना।
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है, हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है। और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी, जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली। और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग है।
1: मांग हो गई है। बिल्कुल सही कहा। और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई

0: टेक्निक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे देनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
1: और पारंपरिक इल्कल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
0: हाँ बिल्कुल। और इल्कल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
1: और एक इल्कल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।

0: रेशमी धागों से बनाया जाता है और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते लेकिन उसे पहनते नहीं है। हाँ। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है, कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी एक दो घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे तो हम आराम से पहन जाते।
1: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है
1: उतना ही समय में साड़ियां भी पहन सकते हैं, उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ और
0: होता है ना।
1: चलिए तो गीत सुन ले,
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने। और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
0: एक पन दो कार है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं। और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती है। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया। तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये

0: लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
1: हाँ हाँ
0: तो हमें ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है। तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद करते हैं।
1: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
0: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
1: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
0: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, हाँ। रहूंगी, है ना।
1: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
0: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और ये ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत। ये बहुत गलत आदत है, आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए।
0: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम ले।
1: हाँ वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
0: और मंदाकिनी जी एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
1: इस्तेमाल होने लगता है।
0: तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
1: जी
0: की भाषा
1: का। आप देखिए ना समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
0: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपनी मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
0: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
0: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
1: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताबें।
0: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
1: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, उसका सदुपयोग करना
0: चाहिए। हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा है, नहीं जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
1: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
0: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
1: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ

0: वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है, और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है। ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे, जिससे हम कभी जानते ही नहीं। तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखती है कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में के वितर करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
0: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
1: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
0: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं, अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली, जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
0: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
1: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में, अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण

0: ही संयम है। भगवत गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अलर्ट करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
0: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंग की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
1: है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
0: इस
1: नहीं
0: साल
1: तो
0: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी और इतना सुंदर जीवन है मिला
1: उसको
0: है,
1: हम खत्म कर देते
0: जी। तो बच्चों को ये हमें, और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए, ये डिश आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो बचपन से ही उन्हें
1: ये संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना, कि आप अपने जीवन को ही समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का। एक गाना सुनाना चाहिए।
0: सुना

0: मंदाकिनी जी, हमारे
1: जी
0: बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची एक पाउडर छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकती है। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है,
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं।
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे? तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।

0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
4: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
3: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो वही एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छील कर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला ले और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
4: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
3: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
4: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची, फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके, हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
3: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखाकर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
4: और अब क्या करना है?
3: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
4: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
3: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
2: जी। नमस्कार,
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था,
1: संगीत सरिता,
2: संगीत सरिता
1: अभी भी आता है।
2: उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी। और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
2: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे। और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद भी,
1: जी वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
2: जी हाँ।
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को?
2: जी जी। जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप, किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसे और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है।
2: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है

0: आर्ट फील्ड में यही करना है या यहीं रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
0: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण से मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।
1: जी जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारी का जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारी का वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है, तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है, तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जो फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली, और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है। बढ़िया।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे जांचने वाले थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते
0: हैं? मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास

0: है और जितना मैं देखता हूँ उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियाँ होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियाँ दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में, फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: जी, और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे, तो उस तरह से मेरा भी

0: ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया, और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था, और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना, और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा करके उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है, और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था, और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें, तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो, चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है, तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है, जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है।
1: मिलता है कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
0: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र
1: नहीं
0: नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था। अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है, जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं, तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज्यादा चमकीला और इतना ज्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया, और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था, जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है, और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की, तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था। किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हर ही रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे, हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग। जी आगे।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे

0: मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीजें नजर आने लगती हैं, कई रूप भी नजर आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नजर आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है। किसी चित्र को समझने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाए?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।
1: मौसम फिल्म का गाना है
0: जी हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई, और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बैंगलोर में दिया था, एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमिन शो था बंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टर हविस आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वनमैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वनमैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो

0: सारे चित्र 1956 के पहले के थे
1: जी, जी,
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैंप नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस जर्नी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो आपने,
0: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वॉज ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है।

0: उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
1: जी जी।
0: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर। हाँ। तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
0: ये जो मेरी किताबें हैं, इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है, शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी जी।
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
1: जी।
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी
1: जी।
0: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है,
1: कभी
0: मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ, मेरे जो पर्सनल संबंध थे इतने साल, 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 who declined ट्रिनाले। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था तो मैं तो सबसे जूनियर था
1: जी जी।
0: तो सबसे पीछे ही था तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना उड़ती सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी,
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे

0: दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं है। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत जरूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
1: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
0: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
1: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
0: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारे चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था कि मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
1: जी जी जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य है और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा।
1: जी, सुनते हैं
0: ये वाला सुनता है।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय

0: उसका चार साल का, पांच साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
1: ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाए तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
0: हाँ,
1: ये भी थोड़ा सा बताया।
0: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं, और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप चार घंटे दे रहे हैं तो छह घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
1: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
0: इसमें दोनों तरह की चीज होती है। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में तीन महीने चार महीने लगा सकते हैं, और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं, और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया, तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है। आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते।
1: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी
0: मुश्किल होता है वो।
1: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आए जो वो जिंदगी में तो खुशियों की पालकी पर बैठ मन चल पड़ा था एक अनजानी दुनिया में। उनका दामन थाम खुशियों की गुल्लक भरते रहे, उनकी प्यार भरे निगाहों ने फूलों की बारिश की, अधरों ने लिख दी जिंदगी की नई वसीयत और फिर जिंदगी ख्वाब बन गई।

हंसने की चाहत कई बार जिंदगी को आंसुओं का सैलाब बना देती है। आंखों की नदी को मुस्कुराहट से ढक लेते हैं हम। दिल में खामोशियों का जहां होता है, चेहरा यूं ही कुछ बोलता रहता है।

क्योंकि बोलना इंसान की फितरत है। भीड़ में रहते हुए भी हम एकाकी होते हैं, हंसने की चाहत में हम आंखों में नदी भर लेते हैं।

हमदर्द, हम साया, हम सफर का जुदा होना, जिंदगी जैसे अंधेरे से घिर जाती है। जाने वाला चला जाता है दूर, कहीं दूर, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाए रखता है कि शायद वो आएगा। टूट कर भी जीने का हौसला पा लेता है दिल। कुछ अजीब है ये दिल, अजीब है ये जिंदगी।

हमारे मन में यादों का सागर होता है। कुछ दर्द भरी यादें, कुछ खुशगवार यादें। कुछ दर्द भरी यादों की लहरों से हमारा मन चोटिल होता रहता है। कुछ दर्दीली यादें हमें सहलाती भी हैं, हमें सिखाती भी हैं। कुछ प्यारी यादें हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, शुभ संध्या। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत है समीर का, संगीत है जतिन ललित का और फिल्म का नाम है गुलाम।

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में नहवा निगार है गुलशन बावरा, संगीत है राहुल देवबर्मन का और फिल्म का नाम है झूठा कहीं का।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: नुसरत बद्र का लिखा गीत सुनिए श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। संगीतकार है इस्माइल दरबार और फिल्म का नाम है देवदास।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है रॉकी।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: सलाम बोल रहे
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब ही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: दो हेक्टर से भी कम जमीन है।
1: विकसित किया गया
0: अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए
1: देश के सभी राज्यों
0: कृषि सुधार किए जा रहे हैं,
1: किसानों को मिल रहा है,
0: निर्णय लिए जा रहे हैं
1: हासिल करके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।

0: थाइसिद' फिलिप फालाखै दिनै आं गोबाथा मालायब्ला आंबाय दिनै गामिव खरक बुरि खरकथाम महाय बेमार मा जाति दंखाहिनि सालांता बन
1: आबो ब्यांगनि आसखै आदो गोरों बेमारनि बिसिंग' बेमार सिद्रा हाबबेगासिद' आबुन उसखाङो जों हाथि थांलायफुरु मगल बाय थां नुगै फायमानि वा नामा हाबै बरसाय मा दंलायाखै दैता मोसा
0: दिनै गामियावखाय हाबबायारा दंन' खखनो दंगु खुनजुबाय खोनाखाय मकल बाय नुगु मकल बाय नुखाय थाखो खोलायफु
1: आबुन बाक्सा बाक्सानखाय गामियाव हायबा सानि गामि थामगै हाबुं मुद्रा रखाव हिनै खोनावो दे आबुनि उलखाय जानि नुखुंनि वाथाब्रिवै नगब मुद्रा खाव हिनै हाय रखिनि खोनावो ता
0: हाय बाचै थान्दैसेब्ला सा
1: दामसा बासै हायसुं दा
2: नि नगब फायनानि खरक बुसों नांबा
0: कक दसिदु नि बासै अरुन आचो फायदे
2: लामा तंतुते कक गल गल खोना हर मानिबा आंलेतै गुबुनि बरक दा तं हनिसे तुमा कक नङा रबा सालायसा बुखुंनै नासे गल गल खाय
1: बासै इ कन आसिक दे आयंग साबो फायतो
2: मुखो बियांग साबो ओ ओमा फुंसा हम पाहाके उतुन उतुन खै सफाय तं फाय जाव खस ता मनंग बा आनु करै साब साफा तंमै मानलिया दा
3: ननर थारि फाया नंगर तंगमनि आं साउ सिमानिया द
1: दंखा थाकिया काहाम जेंखा ताबु सालावैसा गुथुना नांलायो फातानि खग्रुनो खनाना नांलायो आं खनाया नों खनावो नों खनाया आं खनावो हायनुना ब्ले दा चेंपाय
3: कक बा हायनु कलायता
0: हिंदी दादा इखो अरन नु फेंनि गाना ओना चुक्सिदि बासे इखो कय बाता ना हरिसा दिबा
2: चावन कक हायसि कय ते कयनि बिहि खना दि हनजक तिंगो आमो पते बेमार बो हाफाक्या जों बाचिनि लगिनि अबरन से वाना ब्लासला
3: जों चलारक सिमिया किचिक नंगनि बुरि रग बो रमजाखा अ कक गोताल कक तुमानो खनराना बांगनि आंगर तिनि सखबायु बुसिखा
1: बोरै रबो मानजाखा खुबैदि बा दा टेम्पे
3: दाबो खायजरा रग दाताला एबा सेंग्रा कक साव हायदा दाबो अबो कक साजनि कक या सिनजो
1: सायमनो सायमनो आबो कक नि जराव मा सामासि दा टेम्पाय दो सागरा दे साव ब्यांगनि आबुरै
0: दादानि कक न खनावले आंबो फिरिमा हाबुरा खा
2: दुआ कोन सागरा दे साव ताम ब्यांगनि तै बाहेका बेमान चिनि बोरै रग मानजाक मानि खलाय खा
3: दाबो खै सागरा दे थासिंग खै सिंसलारांनो सिनिसि किरिजाक तिरुब्ला सानरकबा
1: दा कोन सागरा दिदा चम्पाय खनाना मुसुमा बाय जानानि मुसुमा बाक्सांगै दंखा दसिनि चलारांनि से साक्लम हाबु हिनलायो बुरि रंनि खाय तामंसा
3: बुरि रंनि खाय खाजानि आबो हाबु थांफु
2: साबोबा अ बुरै बिया बो कामिनें खा
3: आबोबा नंनि कामिनि से हिनब्ला ओ दातु कुरुनि बुसाजक सेमन नगति सावै काइजांगायफु
2: हाय आमाना वारा मा सिंसां खा
0: उलखाय बाहायके हामका हिंसा दादा
3: आबोले आंबो सावै मानलिया कैसिनजनि बिहिर
1: आमो बुइनो बाक्सा सामानि खनामाखाय तमाबो असानि त्रिपुरा बाय ताबिसक मा नाहार हिनब्लासो
3: उसखांग हाथियो थांफुरुखै खनावै फायजाउखो हस्पिटालाव तलांखेब हामै फायबायो होनन्याय साबुनि कंन ताबु कयत' जासिना हिनो
0: हासिंमा नरक फायासिनि सिनि नरकनि बाय सालाय दंमा खाय
3: दामो साबा सिनजो नोंले
1: अ आबु खाय बाक्सा गामिव मह बेमार हाबिया सानि गामि थामगै हाबु मुद्रा खालायफु आबुनि उलखाय जानि नगन नुखुंनि वाथाब्रिवै नगब मुद्रा खालायफु हायरखनि खोनाता
3: खोनादे सिनजो महाइजर रग ससर कंन सालायनाय दायखौबो खोनालायनाय दोमा खायबा हानो सिरिंखै तंगिले जालायग्लाक आबुनो किसा काहामके रोगि मा नायलाय थायग्लायो बुसिखा
0: ए दादा आंबो अकनो न साना हिनि तंमाने नरक जला रक न अबुनो किसा काहामके रोगि नायलाय दिता
2: नां फानो नाङिया फानो किने आगेने सिरिसे तिनि रायदानो रोगै गामि थामुगै हाफुं मुद्रा सेगां खायै बायलायखे तामुंसा
1: बासैनि ककबो खिबिजांनायलाय अंगिया तामुहिन दा चाम्पाय नोंलाय आमि थामगै हाफुं मुद्रा रखावै पाइलायनि त्या तामहि
3: दा क ता किसा वानसुगै नायलायग्रा ना ता बुनि गति ओंखाय सिनि बंगा नों आबोना दा तै आसोग वानै पाइलाय हिमलायग्रा सिनो सिनजा ता सिनजोनि बिहिग्रा किसे गनखा तामो

0: कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही।
0: पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल